हे शिव शंकर हे भोलेनाथ तोल तारव की मरुप निनंदी निज बदपिन हईबा खुरुम जरी तोलवन नाइना।

0: 꼬길 마후사기의 야월 번째는 강바 에베스 바이올로지컬 인디케이터 하이네 보시니 아드나 마나 코미세 람지기 이싱능시 마후사기 오이드레 야므나 사레 아사블람기 우시 에코 레이베 누가이레 나 하이빈
1: 요너 따스다우나 하이리베세 아줌바니 코킬 나이 코이 스와이데 콩리베세 람담세 라이바 오이리 하이빈 나티 마펌마세 루카콤 오이레 직실루 하이베기 인깃 삐리빈
2: ए कुकिन बुलु खा कुंगे अमोर अकाय गने सांगदम नबा सिदी आइडी या जनिंग दे
1: यो अनर आइ खुई कॉलेज की थरमदा आइना क्वा कोकिल गिलम से ताकपा मोनोलॉग अमा तौजग दोरी मदु मिफम सिदा थमजगे अयाब पिबियु
3: मतांग लि केया जा फाते अदुगु क्वा फैन नत्र ग फत्ते या बगी खन्न बगी खुद मोइबना अया पिरे
1: कोकिल ममाना मरुम कोलम दाइदा मपादा हाइबेदगी हौरे इसाबी इसाबी ननावैगी सियोंगी नवासे मपुंग मरै फादुना पुगेक नावयक फौरकले कमजौसिगे हकुमदी इसाबीग सखमानबा ख्वाक अमना अइखोइगी इसासे युपीखी इसानौ कुमसीसु ख्वाक महापु इसा योहनसि तु येंग मांगद उरिबा खोंनांगसिदा इनेम नेम ना महाकी मकोल सारी बसे माय माय माय महाकी मकोल सिदी नेमले ताइबंग मीना इसासे लुक्थोखिनी यो अनर क्वाक न कोकिल मतै मनाउगी वारी तारगा हैरमगनी हे कोकिल क्वाक ऐन न खुगी वारी लुइन तारे आइगी कोन न खुइन तुमिन न नरुम कोक्सिली आइगी इरुम इचासु न खुइन मांगहल नसा बुइसा सखन योल्ली हाइब आइ लुइन खंग अदुबु खंग न खंग न खुइगी सदा नौदा मुत्तनब न तेंग पंगबीबनी अदुगा सिमसु खंगजिलु ऐन इकोल नेम न सारी बसे कुमसीदी नोंलाई नुंसित कनगनी अदुगिनी उतोंद इकोल वांग न सारबदी नुंसित न हुमलोक लोइद्रा हे अपंगबी कोकिल
3: शाह थे बी ngasi gi monolog si di ha kana adu tamu bono ya mahira mi ne
2: adu budi lady isai sakwi ai gi isani da na
3: ho ji da mit ko tho na go da gum law no gi de tho na sa nei le ko pare pare ngasi kwa ka pa bo si ek ni nali nati e bo wakat ki yaning ba yaning da pasing gi wari loin tare aduna masi gi wail si gi wari tine matam khara tabu nung de le se no ko masi gi di wail se matang swa de lo si la si ado mama ai ka nam ta gi mi chang chang dre ko
2: ho sang dre sang dre moi pa na ne yam na hai sing na थोई भी एक हुई से फाइदु है तू हल्ले वायल सिगी पोल बो पुंसी की हाइ दो का दम सुमान रे चुम्द्र ने मोई पा
4: महुसा मणिपुर ता क्वाक ग्याम न मरंग कायरमे अदबु मत मसीद दी इरे लेट्रे सही कुंत्रा मुक्ति मांग दा पाक सन सीजन की बदी दी ती एल्ड्रिन सिंह बाकन बतिलार हिदाक सिंह का मखोई मायोग न बवाकी हिदाक सिंह सिन हालम बतिल काउजिंग सा उसे सिंह सारो बतेगी क्वा की मरु मसा कोक पवालक तुना मसिंग हंथर रखी मत मसीदा अयुक अंगन बता क्वा खोंग बता नद्रे सर्वे न क्वा का खनबा मतु फोई बुनद्रे युंगी गा येरुम येनाउ क्वाक न लाखिनी सेन खिनी हाबीगी मिपाई बुक नद्रे मतम मता क्वाक खोंग बतारग सौरम बदो हौजिकते क्वाक खोंग बता दब कुइरे नुंगसीरे हाइनरे मतम सिद क्वाक की खोंजेलना असुम मसुम ताम खरगा कोकिल की खोंजेलना असुम मसुम नक्षिल लकली

0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड मॉर्निंग मणिपुरनी
1: हेलो
0: हेलो ताजरी गुड मॉर्निंग मणिपुर की थावरम ने हाई पियो
1: हेलो

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड मॉर्निंग
1: गुड
0: मणिपुरी,
1: मॉर्निंग मेधा।
0: गुड मॉर्निंग। कना हुई बीरो बोलो
1: सना
0: सना जाओ
1: जाओ।
0: हुई सना जाओ बुंग असी की गुड मॉर्निंग मणिपुर द तराम नोकचरी करम फिल्म से ताबी निंग बनो हाई बियो।
1: कोई बेना बेना फिल्म की ना उतांगा सोरी सोंगा छपा कन सीवा अम्मा छगत तो जाएगा अभी जो उनके ताजे गेमिंग का
0: হয় হয় ফানে যদি ইসে ইসে থাজার লাগে আমি সম্পূর্ণ তামিনের আছি।
1: থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ।
0: হয় তার আমি নকচারে ইসে তামিন আছি।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड मॉर्निंग मणिपुरनी.
1: गुड मॉर्निंग मैम.
0: गुड मॉर्निंग.
1: फोन तौजरी भाई मैम, आइकु जमाय लेकै दगी बलिन खंगम बम.
0: हाय बलिन, गुड मॉर्निंग मणिपुर दा तराम नोकचरी करम फिल्म मिसे ताबी कनी
1: मैम. हाय फ्रॉम खंगदेगी अलदिना गोसन सखपा काउ खिनु सिमादि नतो बसै दो अदु ताजगे.
0: होय अलविना गोन छन सखपा अदुगा मसामकना सैरिंग बमदि सैरंग बेसेसे. হয় হয়, এই সেই তামিনা সিরা সেই তামিনা কত মি হাইবি কেতরা.
1: হয়
0: হয় সেই তামিনা সে মাম পুনে সেই থাজারকে.

0: हेलो हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैडम.
0: गुड मॉर्निंग.
1: आई सबमिट किया ऑन बिमॉल न्यू दिल्ली के तो बराबर है.
0: हाय बिमॉल, कोई गुड मॉर्निंग मणिपुर दा तराम नोक चरी कर मफे मि
1: थैंक
0: सही ताबी
1: यू.
0: केनी बिमॉल.
1: मैं चाक फिल्म देगी आ पे आइडम शाम सक आई डी टी रे रो ये नहाई दा से उसी दिन ताजे गए
0: बिमॉल मतियम तंग अंगंग बिर कदोई बा ओरम गनी.
1: मेरा मैं दिखे सक सोई जेते वो नाथु गनी
0: अस ऑन टॉक पनी आई नै सैसक पासु काई हैजे दबदा हैजे रुरे.
1: मैं हेजे दम हेजे पजे
0: होय होय, ngasi ta thok piro duga hairaga matung da di soidana ngang biro ngasi se tamina na.

0: शेखर, किसी से प्यार की
1: और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर
2: तहंजरी बगीत ऐसी की सही सकली बा कुमार शानू
1: वो किसी और को चाहती है।

0: मथंग तहन चरी हरिहरन अलका याग्निक अनेपुन सकमिनब गीत।
1: मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है

वसंता यनिंग था नाकेन था ऋतु की खोंचत काइदना मथंग मथंग लाखपगुम मथुत कारकप कनागिशु सरुक थुंगलई पुंसी बसंता बसंत की अयुक्त थेंगनखिब सखंगदब कनागी मशुंगलांग थमोय इथक हौरखी मथंगदमु खुदोलदमजरी राधा रानी सुंदगी दिनेश अमदि पुष्प रानी अनि के पुंब खोंजलदा नरेंद्र चिंगांगबुमन सरेंगब जेंगम कामयम दिनरिंदर चिंगाम अनिपुन्ना सैरांगबा इसैनी खुदोलदमजरी तमिलसी

0: हेलो हेलो हेलो ताजरे ताजरे हेलो लेडीज थोरम दादू मुताराम लोग चली का ना भी रुबनो ताबी रुबरा
1: हेलो सर,
0: ताजरे ताजरे हेलो लेडीज थोरम दादू मुताराम लोग चली अथोय मथोय है भी बुका
1: मथोय आ
0: फनी फनी तक पियो करी वाफम फंग दो पी के दबा हेलो तभी रुबरा हेलो
1: हेलो ताई
0: सर ताजरे ताजरे करी वाफम फंग दो पी के दबा तक पियो
1: स्वाफम जे फंग दो पुरी आम फंग दो नी सर तो कमाई है दूनो कंग ग्रीन
0: कैसो पाखट पीदना है बता रहे याम नमक चम चम ना वारी साब नु आइन साना से करी करी वाफम सिंग नो याम ग सुंगाई जगे
1: अको जिक मणिपुर गे ओय ब तिबम इरान हाय ता रे को सा यो इसे हो जिक मयुम दा हंजन ब ngam दा ना लई बा ओय ये जिक केन दा लई बा आईडीपी सिंग जे इया थु मतम दा मयुम दा सुम तंग हनिंग बा यी लान चिना मरम ओरगा awana tari bu me anje
0: hoi hoi
1: deisda khoi je sum khoi jung yoi ba moi na sum noi ta ba awana je lo pu min nare de de na khoi na noi ta ba de gi he na moi ne he na noi ra mo ju ni ba
0: hoi hoi khoi pun na magi magi oi ba ma phom cha ba ma phom mo da noi na pun na hing mi na si hai ba gi pau jel si ni ko pi bi ri se
1: ma ni sa
0: yam noi je ma thoi chai sing du na bi ra bro ho jik se ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯣ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯣꯂꯔ ꯃꯨꯉꯥꯏꯃꯤꯅꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪ ꯀꯨꯏꯅꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗꯝꯖꯔꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯁꯦꯁꯣꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ

शायद यह आपके जहन को और जगाए या मुकम्मल कराए वो अधूरा खत जिसे आप लिख रहे हो या छोड़ दिए हो। याद में उस खत की ये गीत है पंकज उदास की गायन में महक एल्बम से, नुसरत बद्र की लेखन और अली घनी के संगीत में।

ये है संगाई चैनल, आपका पसंदीदा चैनल। और संगाई चैनल में अभी आप सुन रहे हैं गीतमाला की तरफ से संगीत धमाका। मुस्कान भरे वो नूर भरे चश्मे बदूर जिसे कहें नौहीद, जो इस गीत की नायिका है। और ये गीत मुस्कान एल्बम से है दोस्तों, पंकज उदास की ही आवाज़ में है, जफ़र गोरखपुरी की कलाम और पंकज उदास की संगीत में।

हाँ दोस्तों, खुदा बचाए बुरी नज़र से, हर बला टले। और गीतमाला की तरफ से ये गीत है आपके लिए, हमेशा के लिए। पंकज उदास की आवाज़ में ये मधुर गीत है स्टोलन मोमेंट्स, इस एल्बम से। जफर गोरखपुरी और पंकज उदास की ही लेखन और पंकज उदास के सुर में। और क्या आप जानते हैं इस गीत में जो नायिका है वो कौन है? वो और कोई नहीं दोस्तों, समीरा रेड्डी।

दोस्तों मानो मध्यम सा हो गया है ये दिल, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, पर हमारा अलविदा कहने का समय भी आहिस्ता नज़दीक ही आ चुका है। इसलिए दोस्तों आज के लिए संगीत धमाका यहाँ पर विराम हो चुका है। नमस्कार।

adombo akas van infal gi fm sangai channel da amuk hanna taram nok chiri sanduk chiri ba fm mega har sam ohum dasmik ma hauju pung phom asida amuk buduna lak chiri manipuri film sei khudol gi han betlo khachari ningsing khun film sei dagi नाउबोई अमदी इराय लेम अनिग अपुन खोंजेलता दोलेन बाबू लाइशमना सैरेंग बमदी आरके जितेना सैरांगबा फिल्म सैनी इसे खुदो तमजरी पुने तमनेसी

0: 那个天的也都不马上进去来了个塔比达那这个
1: 啊是就个天的给来了干的那塔不干的呢
0: 嗯哼
1: 啊得一路塔不是得要困难加这他们干的那都得定增的那个多干的塔什么的都安欧比的塔的
0: 嗯哼
1: 我外的啊别在别呢碰到过啊路这个肯定他那些
0: 哦
1: 啊都一下呢前面那个定价的那么多个他们呢，这个户外情况慢慢就的，我个天的来参加的，啊，这个一个 department 这个我们的比特来播的，
0: 嗯哼，
1: 啊，这个还一年还就人不播那的，香港没有比特呢，比特不播那的，没办法，咱跟那个的来的人就好开的，
0: 嗯哼，
1: 哎，没看没看你的门头就就这个盖的盖特的还干的，啊，把它铺路都多了还你铺路呢，这铺了就铺塌了的干的，毕竟也没工没烟个的。yen bara khang de dungana taung ponga ten
0: crop insurance kai dena leba ko farmer singi amashigi crop insurance yokshin bi raga di mahai marong mang ba tak pai singi chawna de gi len na phudat khiba haibena sing bana chuga nga yu ibising sei sa haing kai gumba khudung chada ba khudung thiba ma de gi mang ba tara kha su insurance yau tara ga di khar dang wai su kana ba phangna na bui khudung cha ba le sigi matang de yoja hana farmer moi na sigi matang de yoja hana kha khang bi ba khang de ba sigi matang si
1: de khang de lai kai de de haina ba de chi chi lai ba de ma le ai a tu ga akhoi de a tu gi yam na kum na jo hang ko ta na de tau de
0: mane mane maru ina khoi gi stage da farm da farm the maroi na mai si mai puna na som do onse lega lekhi ba degi maron da sin ba song ba ngam da ba ne haina
1: ma
0: lo bu sui ai aduga wabugai lam maroi na za gi lam sai sai sta farm to ro hone bi ba mai am sina kari kari sai gi mo chi laga jana tham bi ning ba farmer mo ina hai bi ning wa farm kari kari ge di le
1: maroi na farm gum ba to ba ji de akoi thabak tan ba ya de aying ba nai ba ya de mam de chaji पान बदे इंगे न तो नो कारे न तो ब ना दम जारो जई के पोथो पोथो पों न मरो पछा प्रॉब्लम अदम हे न न वर कने पा मचा म तो रजु मदु के पोथो तो पोथो न न बहना ब मरो न इसा दे तिने न थबक तो हो द ब अकोई दे मदु न थबक ने न अदु दे के फंग क दो चेंज ने चाय सु था का न म म लाई लाई सु तमन के तो नि न अकोई मरुना फार्म तोता दे चाव पीपा लौरा म पाइता दे जही मदा लंग मरी मंगा दु पुथुपंग मी छान तन दे दे अदो तलग दे फार्म तोबदा अदो दे काना रो अलिगे आइना मा यो खले ह गन छजिक पिजे दे दे अदो तुम जही म इनकम छुला ला रो ला रो भी मस म वनी मरुना सातन दे बताए अदि इच्छा फन म थौताए मरुना सेंतो छु था मरी मंगा जे कमाई तो गन मा जे ग्रो लेन जे के कमाई तो जे ह ब चखन चखो त न ब खले दे या दे चखन ब खले दे फार्म म जे तुम काने अदि था खुदिंगी तुमन भी दवरो था कि न ते नुमितारा ने लेगा न तुम पगर में मतों न मचा कोक्सर पपोनी आ ममन होंठो करे होंठो रा तुम
0: प्रत्येक मौन तुम
1: पढ़ो या तुम मतों दा तुम कोक्सर पपोने पुयों जो लगा तुम था कि पाले सिंह अनि हम तो हुए जो कार पपोनी ना तो ते तन बुतल ते काना दे
0: अधिक औजागी सी की फार्म की प्रोडक्ट में हम सीधे कैथियल दे यूरोप पसी कल ऐसे तकी ललून भी सिंगा लोबल आप पुराना तरह का क्रमांक
1: ललून भी ना ललून भी ना तुम चाहे ना पार के ललून भी कंटेक्ट तो मेरे कांड
0: है
1: तो तुम ना जो वो पार भी जो अधिक ना तुम्हें भी कह का चाचे लग पे रोक है थोड़ा पे यावे मरो ना तुम्हें भी पाना बोलने था अतो ललों भी कोई लगाए लगाए कि ललों भी मचाम चले रहे हैं ना मौन ना तुम पूजा की हो तो मैंने तो
0: ओ अतो कोई सरकार की थबक तो बात था खुदिंगी तो लोग पंगा मिति था खुदिंगी पिछला ऐ बको अतो ना मागी फैमिली पूदना फैमिली मेंटेनेंस तो हुए अतो का फार्म तो वो मिति था खुदिंगी तो लोग पंगा दोरी बने हो अन सिगी मतांग चित दी ngasaigi tha khudingi de khoi chatabe adaba imu manung ma purak pani na chatabe adaba mar mayam ma leigre swaigi matang sai sa farmer sing na kamaina manage to roga yum pan batai matam matam gi silak pasing kamaina mayung na bo khonari ada ikting
1: ado jo mana ma sing phang khok tan na tan mana ma sing ju hingon koi na bo khot pato bani na phang de gi matam khitang cha ding da mu mana ma sing de gi mu puto ga na पैसानुक साधुआ दुमाने तवे अदुगा मतम मतम दुगी अखोइना गेप फंगबा अयुते छजि फालमगा नुंदिनदा मेगे खितंगमा खुलंग हायरकता जो अखोइना चलकांदा हे जाउबा अदुमान तोगा मेंटेनेंस जे अदुगी हिंगोंगी मतांग लोलक तिम मतांग द मु हांगति 이게 타바인강 수르간에 아주 많이 챔파가 달.
0: 자기 월이 시암 누가이 아따 생나 아따브싱드 수 아두가 farm도 비리범이싱드 수 야암나 뿌닝 토굿게다 보고 품마야멈 수 요그래. 뚱도 허락거도리바 나하싱시다 farm기 마땅다 farm 하이브시 라이브컥드나 로우바 라이브컥드나 farm도 보기 와품나 때비다 farm도로가 이나쿤베 야이 하이브시 오자나 타제비라가디 나하싱드 두기 와품도 마띠엔등 탐비요.
1: 마로이나 타복 주범 레이터바 아데게 로펌나 헤 우레 치범 마펌 오타데 파암지 똑토가 아이는 마두다 타보 오이나 부르간다 아이 힝보다 저코나나 보기 공탕지 레이그네지 마양다 신지마 아이 비전
0: 다그체리 오자 질라바 오자기 파암기 타빈강 마암시르기 나학등 국화르등 가이톡피라가 더마시기다 먹다 마담 비비바 와리고다 샤는부기 단자 비비바 시기다 먹다 한나나 다그체리
1: 거의 아가스반 데일락 비르바 오자징지 다그체리
2: Kari Hairi Lomina, Toramashida, Wabagai Kedajit Awangdagi, Mayeng Bam Ingoba, Lomia Siga, Nabunga Nadana Wariwatai Shaba, Taminare,
3: Taminare Tato,
2: Toram Putokba, Raichanda Chingtam, Adudi Chalibema, Toram Singasi Sutamina Kibagalina, Akoi Kungungi Toram Lushinbugi Pungjasu Eregli, Nasigidi, Ichilukba, Hananabatorasi,
3: Pani Pani Tato,
2: Toram Tabiri Bissingbu, Ichilukbana, Amukahana,
3: Kurum Jari.

0: World Hypertension Day ki hiramna controlling hypertension together haibasida akhang haichingna wangangbaga loinuna lemna laingbagi kem amasu pangthokke numida siga mari lenyana RIMS ki psychiatrist ki professor Dr. Lenin na hai
1: blood pressure gi hidaksi amukpu chakragadi topaya de akhoina sakchai uthak amadi lifestyle hongdoba noiba penbagi chang hanthalaba ado ragadi akhoi farak patan ja lakpada akhoi lipi gi hidaksi thadokpa hanthaba yarakpa yai aduga loina loina na akhoi na thamjaning bawapamdi akhoi na kigadaba si bp gi hidak natte bp gi laina sini aduna akhoi na bp gi hidak kiringaida bp na bana maram oirakanda akhoi de thogalakpa yaba heart attack stroke aduga kidney shokpa mitnan singba bam sing maroiba organ sing da sok lakpa dagi akhoi matam sana kalhaushi
0: mukhya mantri yunam khemsan angasi imphal saikulambi semjin sajilibadu hakthengdani kengsen kre haibalambi asi sahi asi gi march ki tang tara marida mukhya mantri yauba thoromama ga loinana semba hokibani raiji gi public works department gi chief engineer chongtham biswachandra na mukhya mantri da aujik lambi semjiliba asi gi matang da paudam ke mukhya mantri na lambi asi ningthi namadi matam sana semjin belushin na ba pautak pikhi Malayam ki Telecommunication and Information Society numit ngasi palan taunari kumsi sahi gi palan thorum asi gi hiramna digital lifeline strengthening resilience in a connected world haibasini numit asi gi mari lenyana mukhyamantri yunam khemsa na hai leibagasi gi digital infrastructure hi nama pangal kankathana ba digital india na achobu thokdang lauri ma ki paujelama de sri khemsa na hai digital gi khuthang da kanglu khuding makpu samna handu nama pangal kankathana ba sarkar na honari केंद्रीय ट्राइबल एफेयर्स मंत्रालय की मखाद लेबाग सिंह बथुंगबदा पीएम जनमानमसुं दास गुआ की मखाद इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले टेक्नोपोल जिला की ओइना हयेंगदगी हौरगनी जिला से एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रथोप चेरोल अमनहाय कैंपेन असी थासी कुनमंगा फाउ चथगनी एसडीओ मसुं बीडीओ सिंह दास गुआ खुंगंग मस खंगदोक्तुना मैलेनाबा विभाग सिंह की डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह मसुं स्टेक होल्डर सिंह ने कैंपेन असी पांगथोकदबनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगपुकपिना सु कैंपेन असी हयेंगदगी हौरगा थासी कुनमंगा पाव पांगथोकनी कैंपेन असी पांगथोपुगी मरुएबा पांदमदी मियामदा मरुएना ट्राइबल सिंह द सरकार की एफतौरांग स्कीम सिंह की मतांगदा निंगथिना खंगनबनी मसिदा डेवलपमेंट ब्लॉक मापनम सुं खुंगंग हुमातोय कोनसिनगनी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य पीएम जेएवाई हेल्थ कार्ड एनरोलमेंट की कैंपेन अमासीदगी कक्सिंग मयाले काय मल्टीपर्पस हॉल हौदोक्रे निमित्तरा मंगानी चुपना चथगदबा कैंपेन अदुदा सरुक यारदुना एमएलए रामेश्वर नहाय सीएमएचटी कार्ड पायरंब सिंह पीएम जेएवाई हेल्थ कार्ड ओंथोकनबगी थौरमसी सिनबनी रिलीफ सेंटर फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन मणिपुरना नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की मिटिंग मखाद नोमगी ओयबा आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी वर्कर मसुंग मेरा पाइबी सिंगी ओयबा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मंगसी खागेंबली नंबुल मपाल द पांगथोक्रे ngasi पांगथोकी बा थौरमसी मरुएना राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज एंड अदर गवर्नमेंट बेनिफिशियल स्कीम की मतांग द पांगथोकपनी थौरम असी द अखंग अहिसिंगना लेंगांग न पीरीबा कानबा सिंगी मतांग द मियाम द मबुताना खंगन की पाउगी मरक थना अटेनबा ब्रेक अममु
2: खंगन जबा इसा इसा की कोर्ट केसेस अमदि आंग मरी लेनबा हिरम सिंह लोइसिन बिबा यारे नेशनल लॉ अदालत हाबिदि मियाम की वयल संग मसीदा नकल अनिमा की मियोय सिंह ने यानत्रि बि हिरम सिंह अदुबो कोर्ट की तोफम थोपा रूल्स की प्रोसीजर अमदि साकी सवन यालदना याम न नुक्सी सानना लोइसिन बि यारबा लॉ अदालत ता वयन गदरि बि सिंह असि इसा याउना लोइसिन गदबनि अमदि मसीना अरोय बि वयल सु ओइगनी लॉ अदालत की वयल सिंह की मायोता अपील तबु सु यारोय पुनमक असि सेल तिंगदना तगुदौरि बनि लाखलिबा मेगी तांगमा पन अनि सुबथा जनमिता लोक अदालत पांगथोकनी लोक अदालत ता पांगथोकदरबा केसेस सिंह अदुदी इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स एंड अदर बिल पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग नॉन कंपाउंडेबल लैंड एक्विजिशन केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट ट्राइब्यूनल्स लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस मैटर्स मनी बैंक लोन रिकवरी मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एक्सेप्ट डाइवोर्स फैमिली मेंटेनेंस केसेस सिंह क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अदर सिविल केसेस रेवेन्यू केसेस सेक्शन 138NI एक मनुंग चनबा केसेस सिंह खंगन जरीबा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी अंडर द एजिस ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी एडीआर बिल्डिंग लंपेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लंपेल पार्क फोन नंबर 9436239666
0: आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउता बिरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना लिसिंगनी कुंतरु की पद्म अवार्ड थासी की कुनमंगा द एंथोक लगनी होम अफेयर्स मंत्रालय ने सोशल मीडिया थगत पवार वल अमदहाय

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड इवनिंग कना बिर बनो मिंग लाइफ हम हैबियो हेलो
1: मैट्री जी बो तो न फिल्म से ही वो बिर ब्रो मतलब से वो
0: मणिपुरी फिल्म से खन बिगिन मिनि कोन से से करंबा होय होय करंबा फिल्म से न खन बिदो से हैबियो फिल्म से से कौ बिखरा बो
1: योकी थामोय फिल्म गि कि यांगोइने छकबा ताइबं सेम मपु ओन ता बुजों दे ता जगे
0: होय होय दो इसे खन बिरे इसे मिंगले फंगा मुतंग हाने खंग जगे ताबिरा
1: होय
0: सोंगि मिंगले फंगा मुता हैबियो
1: आइ संगाइ चिन मखाले काइ जगे अंगों कोरोबा
0: होय होय अंगोम कोरोब न खनबिरकलिबा योट की थमोई की फिल्म मस्ते की एके यांगोई की नाइटम खोंजल दा ओजित बाबू नि थौजम न सेरिंग बा मदिना ननाउ सगोल मांगना सेरांग बे से सिकदोल दम जरी मे आबुन तामिनर से दुदी
1: आइ जम वाजारे थागचरी
0: थागचरी

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड इवनिंग
1: मैम
0: का नाम अभी रबनो मिंगले फ्रॉम तक पियो
1: मैम
0: आई हाउ बी दगी चंचन हाउ रे बी दगी चंचन चंचन बॉय खोई थरो मसिदा दरा दराम नोक चरी है बियो करम फिल्म से नो चंचन खन भी दोइसे
1: मैम मनी को प्रंगी सदानंद न सकवा तंफा इबे मा तो बसे दो दो ताजे
0: होय होय रुमी मैते ने सेरिंग बदु को तुम बथंग जमना सेरांग बि सेसे अदु इसे सि बोयाम न खैदा बि रुरि पसि बो खरि मरम गे ओरबनो मरम गले बि ब्र
1: मैम इसे जे सम तानि नक्पा
0: होय होय अदु इसे सि बो मते म तंगम बिरंग ग द्रो चन चन ना
1: होय
0: हाय बि हाइते होय होय अदु इसे सिंगम बिरक लो आइ खुदोल तम जरक लगे को
1: Tampa,
0: Tampa, Tampa, Ibema, Tamoy, Egidirani, O, Coloina, Tampa, Sakendi, Ikabin, Pandore, Munna, Waka, Tauhoro, Nancy, the letter, Tagetari, Jensen, Tawayana, but the Amatangan, Birambiki, the Makta, Adungi, Sekudo, Tamjeri, Mayampuna, Taminarasi,
1: Tagetari,
0: Tagetari.

0: Hi, Tomba.
1: Che.
0: Nangi 50% discount pi ba resto Pokemon pack to. Loi re haine karmai tori no.
1: Loi de loi de. Kadai de kino da. Adu ge ichine ne 50% hai do. 50% khatne te 50 to 60% ni offer pi ri se. Adu ge stock to leitra ge sune. Hauji adu mak book tok se laga discount adu mak te adu pi bagi khudong cha ba su leibani.
0: Hai bidi
1: ne. Kana gumba mana macha gi luhong bagi on pot oin hapsening ba. Luhong de bidi matam khra wali ba. Natraga yung gi darkar oi ba do. Hauji mak book tok se lagadi tha khra gi तुमदो ओइरसु सिल्वर जुबली गी ऑफर ओइना अचौब डिस्काउंट पिरि बसिगे लोइनना अदुमक फंगदोइनि हाइबा
0: अदुदि इनेगी मचानु पिगी लोहोमगी हाइबदो रेस्टो पोकेमोन पार्क सिदा हाइबनि हौजिंग मक बुक तौनना बा हाइबिरु रगे
1: होइसे रेस्टो ऑफ मैट्रेस मियाम नेना खंगबिरे हिपद हकचांग द यामना कंफर्टेबल ओइबा मोम पार्क नि सिल्वर जुबली गी ऑफर सिंगसि अदोमजु सोइदन लोबि हो नसिमक लेंसिन बिरक्सि पेना स्टोर
2: अथम तबीरी बसे आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल देखनी चैनल स्टार गुड इवनिंग मणिपुर लाइव फोन इन मणिपुर फिल्म से खानबिगी थोरमनी संदोकचरी बसे अथम से खगी थोरमसी दा सरोग्या बिरो एखगी थमजरी बा टेलीफोन नंबर दी 8798032 93 हेलो
3: हेलो
2: गुड इवनिंग
3: मैडम
2: गुड इवनिंग कना बिरो बनो मिंगले फोन तक पियो
3: मैडम
2: कॉल तौर कमन नोनी मैं नोनी तराम नोचरी गुड इवनिंग मणिपुर की थोर मथेल हो नोनी से
3: दाम
2: से
3: इंदोन
2: बोरा अब मथेल साबीरको करम फिल्म से नो नोनी ने खनगी
3: फिल्म मैडम अरबिंग पुष्पा रानी सुधीर कंगजम
2: सैरेंगी
3: सोनिया हेबम सैराबीनबू उन्नीबना है सैद
2: मैडम याम चुमना मये याम फजनसु हाइबिरै को
3: मैडम
2: इसैसिसु याम फजनसु गंबिरतो माले नोनी से दुदी
3: लाइ फाबदि फजदे बाय इम खतांग मैडम
2: इसे होबीरोसे खुदल थमजरगे सौजदे सौजदे मतेंगीन गंगीरबीद नोनी हन हन थगचरी इसे खुदल थमजरी मैं पुनः नुना थामचरी
3: मैडम
2: थगचरी

0: ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯖꯄꯥꯟꯒ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯨꯔꯝꯃꯤꯝꯅꯤꯅꯦ.
0: ꯍꯦ
1: ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯨꯔꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ.
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ ꯌꯩꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯊꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ.
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯔꯨ ꯈꯨꯗ ꯀꯨꯜꯂꯒ ꯈꯨꯔꯝꯕ ꯁꯤꯃ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯦꯠꯁꯤ ꯈꯣꯏꯗꯧ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯝꯃꯒ ꯅꯣꯟꯊꯕꯤꯁꯤ ꯁꯝꯅ ꯈꯨꯔꯝꯕꯗꯣ.
0: ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩ. ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯀꯤꯃꯣꯅꯣꯒ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯆꯥꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯛ ꯀꯜꯂꯒ ꯃꯀꯣꯛꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯇꯥꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯤꯅꯦ. ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗꯤ ꯆꯥꯅꯅ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇꯨꯒ, ꯑꯗꯣ ꯀꯤꯃꯣꯅꯣꯗꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤꯡꯗꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯍꯪꯉꯨꯕ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯌꯥꯝꯃꯟꯈ꯭ꯔꯅ ꯃꯃꯟꯗꯣ. ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒ꿤 ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯏ ꯀꯤꯃꯣꯅꯣꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ.
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯖꯄꯅꯤꯁ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯐꯪꯕꯤꯔꯕ?
0: ꯐꯪꯉꯤ, ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇꯨꯗ ꯍꯤꯔꯣꯁꯤꯃꯥꯗ ꯁꯦꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ, ꯏꯌꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯍꯥꯎ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯤ. ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ
1: ꯋꯥꯠꯂꯤ.
0: ꯈꯪꯗꯦ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯗꯨꯅꯔ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ. ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯖꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯂꯤꯂꯥꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯆꯠꯂꯛꯇꯅ ꯃꯃꯩ ꯊꯪꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕꯐꯥꯎ ꯐꯝꯕꯗ
1: ꯋꯥꯔꯛꯄ,
0: ꯂꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯐꯥꯎꯏ.
1: ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯅꯠꯇꯕ, ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯗꯤ
0: ꯂꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯦ.
1: ꯐꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣ.
0: ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯏꯁ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯆꯣꯂꯣꯝꯒꯨꯝꯕꯒ ꯏꯟꯊꯔꯕ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯀꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯆꯣꯂꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯖꯄꯥꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦꯗꯅꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯒꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗꯅ ꯇꯥꯃꯣꯔꯇꯟꯒꯤ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯏ. ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯣꯞꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯩ.
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯀꯥꯕꯨꯀꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯐꯪꯕꯤꯕ?
0: ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯖꯔꯛꯇꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯁꯟ, ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ, ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ
0: ꯇꯦꯝꯄꯣ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ.
1: ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯤ ꯐꯪꯕꯤꯔꯕ?
0: ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ, ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯔꯗꯤ ꯐꯨꯔꯤꯈꯥꯎꯁꯤ, ꯐꯨꯔꯤꯈꯥꯎꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯦ ꯂꯅꯥꯏ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯛꯆꯔꯒ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ
1: ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯗꯦ,
0: ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯏꯁꯥꯁꯤꯗ, ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ. ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ
0: ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ
1: ꯄꯤꯖꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯖꯔꯦ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ
0: ꯇꯥꯡꯕꯩꯁꯤ. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯤ ꯋꯥꯡꯉꯤꯅꯦꯀꯣ, ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯣꯠꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠꯈ꯭ꯔꯤꯝꯅꯤ. ꯄꯤꯄꯜꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯐꯣꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ. ꯁꯦꯀꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯆꯥ ꯃꯃꯗꯪ ꯊꯛꯁꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯃꯅꯤꯗ ꯆꯥ ꯀꯞ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 40,000 ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯌꯥꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯛꯄꯗꯨ ꯃꯔꯨ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯅꯤꯍꯨꯝ ꯁꯨꯔꯗꯤ
1: ꯆꯥꯝꯃꯅ ꯌꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅꯦ.
0: ꯌꯥꯔꯦ,
1: ꯇꯥꯡꯉꯤ, ꯂꯨꯄꯥ 10,000꯭ꯗ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ.
0: ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ, ꯇꯥꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯥꯀꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯇꯣꯀꯤꯌꯣ ꯇꯥꯟꯅ ꯄꯥꯏꯔꯦ, ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯇꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ. ꯅꯥꯒꯥꯁꯥꯀꯤꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯒ ꯌꯦꯡꯉꯦ. ꯌꯦꯁ, ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯥꯀꯤ ꯑꯦꯇꯣꯝ ꯕꯣꯝ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯜꯂꯤ. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯪꯈꯤꯕꯗꯨꯗ 1945ꯇ ꯁꯣꯛ 95ꯗ ꯉꯁꯤꯗꯩꯅ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯔꯛꯑꯕ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ, japan gi atom bomb anirak pokhai gra ba matung jida scientist sing research da cancer thung bagi maruina leukemia blood cancer si hengat le radiation gi effect tu na chahi kaya masida pot thaba yaru drimni adu radiation gi effect ta le hori ba mi sing se
1: skin cancer
0: punamak si leibaduna madu de effect ori ba mi sing si moin hiba kusha kawi atom bomb gi victim sigar ba sing dunat ta ba hujik sidadana hujik phawde hingi ba mi da shoinai re ba kaya leire aduga matam adu ta leihi ba radiation gi effect tuna sidi si hok dra ba rap da le ho mi se machina miro lakpa da ngang shoinai rakpa makhut yauk da na polakpa marai bakta mamit nam te palakpa makuk yauk da na polakpa sugum ba gi effect si lei sini ko yam dangerous oire isi
1: madena living example
0: oire living example oire adu magna suni doctor singna no to nuclear war hairi si aduna hujiki nuclear gi victim oi griba atom bomb gi effect phangauri ba mi singa du gi laiyang na ba hona ba da hospital ma nagasaki de lehoi madu atom bomb hospital madu de lehori ba patient ahalaman radiation gi effect lehori ba kangbu se machina moinam khurum jari ekoi da noina seminar gi conference gi pautai nuclear gi khulai bomb se amuar na pokhai han biganu ko haida maram di ekoi madu gi victim ni punsi chupa soinai ra ba mini ऐखोई की हिंगाउरी वही बाग कुछ हा ऐखोई की पाउज़ येलेस है पृथ्वी की नंगी नंगी ले बाग ता हंगर कांडा नो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन नो मोर हिरोशिमा नो मोर नागासाकी मधुगी वही दुदी मयाम सिद्ध थमोई दा ठुक लाऊं न पाऊरा मशी थोन भैया बपोट नती है बधुगी प्रोमीज़ ऐसे हॉस्पिटल दुदुगी पेशेंट सिंगा तोरक पा अपील दुना अमुक्का कोई डॉक्टर सिंह भी है न थोना अपी सुमाई नी ये मतुंग दे कोई एयरपोर्ट की दमक तक चले एयरपोर्ट सीधे मुक्का नुआई नागासे समुद्र में आई था संगत एयरपोर्ट लंबी मोई दी चिंग न कोई चले लंबी अरे बल लंबांग सी लेते थे ना एयरपोर्ट सी समुद्र में आई थी साये नागासाकी की मशीशु वकल दा अदु मोई अचीवमेंट दु येम कांडा नुआई थमोई दु पावी ओ दिस इज साइंटिफिक अचीवमेंट अना समुद्र में आई दुदा लैंड रिक्लेम तौरगा लंबी ये मत चले अदुगा समुद्र मयाई सिद मोइन एयरपोर्ट सि याम चाउबुदि नति द एरोप्लेन खरा ताहंदना अर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमनि दो मदुगि एयरपोर्ट चंग पसिसु चानन नुगाइब सरकार ग नुगाइब गाइबा वखल दु मदिसु सोय सिबु सरगाइ दु मक ओइबि जाब जा ला काइ वखल मरमदि समुद्र मयाई दु मोइन हाउ दे मेट द एयरपोर्ट दैट टू इंटरनेशनल लेवल द पचहलिबा मदु साइंटिफिक अचीवमेंट दु दि वांगेन लवे अदुमाइन तौरगा नागासाकी दगी अमु टोकियो रोम द पाइरे टोकियो योरकांदा आइना आइखोई मरुम पांगसिं पीस कमिटी द आइ नोकी कोऑपरेटिव अमतंग दि येंगनिङी नोकी समाजिन चौखलिबसिद कोऑपरेटिव की थौदांग सि कयाम चौबगी येसुंग त खंगनिङी एन हाइरुरे अरे मोइना फारेदि कोइ हयेंगी सिनबंगमरि येंगे सिले नोङालगा मि अमलाय ए नंगी मि लेरे नाउ नंग हुजी योकोहामा द चटपता रे टोकियो ग ट्विन छुतिनी आ पुंग निरोम चलगा लई योकोहामा ब शहर छि मसिद नुपी एम लई आ खरा मियाई ओइन चलबा इंग्राजी खंग नुपी एम माना इबु लोग बुलाए योकोहामा गी कोऑपरेटिव म यिन हंदोरि ने ट्रेन द पुई ओइति कोऑपरेटिव टु कोऑप कानागावा है कानागावा प्रीफेक्चर मधुगी एरिया दा लेबा सिटी दुगी मनुंग दा लेबा कोऑपरेटिव अमन आइ जे पुसलक मोई डायरेक्टर गायरमी मा इंग्लिश गांग दे अदुगा इंटरप्रेटर अमा अमुक तोंगा न थमगा हुजिगी कोऑपरेटिव सिगी ऑफिस दे चंगगा लीरे कोई कोऑपरेटिव की पोसि सिनियन आइ चानन नुंगाइ बम फौई मरम दे कोई गसी मणिपुर दे तोरि बो कोऑपरेटिव की मो कोई मणिपुर पिखरब सिदा कोऑपरेटिव सि रिस्टार्ट तो वलिसिंग मंगाइ मथक दे लेय अमत माई पाकती है कोऑपरेटिव है देखो ये सलार फम वन मैन सोसाइटी है ना इमुंग मगी नुपा माई नुपी ने सेक्रेटरी अदगी इमुंग मनुंग दुगी मीसी पंपान द पांचल का पैसा खर लौब याना बई तौब कोऑपरेटिव की मोंग आई छेंग हाई दुख चरब निको खेनरी से जापान की अपुन बले पाक सी की कोऑपरेटिव सुनगी चात्रुक के यंखई खक लई अमत तरे स्टार्ट तोक दी हाई मोई जापान अपुंब की कोऑपरेटिव चात्रुक के यंखई लई अरे हुजी यहाँ नहीं येंगे बसी कोऑपरेटिव अम खकते निको कोऑप कनागवा है ना कोई

लता मंगेशकर मदी मोहम्मद रफी सैसक पानी से कपन बखोंजल द इसे से तान जकी बगलोइना गीत संदोक चबा मतांग सलोइसरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिंग नुमिदांगी पुंग तरह मखाई तारे एफ एम संगाई चैनल की थरम संदोक लुसिन जनब मतम युरगले हयिंग इंगा के निनी पानब मे की तांग तरह निपाल दिन थोकाबा नुमित नुमित असी की एक की पुंग मंगा मखाई ताबा मतम द चैनल असी की थरम संदोक हौजगनी नसी की दमकता दी ताबिरिबा सिंदगी कानिया थंगनी जरी खुरुम जरी जय हिंद।

0: झूठा ना करो से। ये फिल्म आई थी 1967 में। दोस्तों कहते हैं कि जब कोई चेहरा महज चेहरा नहीं होता, वो एक जज्बात बन जाता है, एक ख्वाब, एक तस्वीर बन जाता है, तो फिर हम सब के जहन में ऐसे ही अल्फाज निकल कर अपनी जबान से निकलते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो नजरों में बस जाते हैं और फिर दिल से उतरते ही नहीं। आज की इस शाम को एक ऐसे ही चेहरे के नाम करते हैं जो खूबसूरती का तर्जुमा है और मासूमियत का आईना। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं वही नगमा 1969 के फिल्म रूठा ना करो का, वो नगमा जो आपके कानों से होता हुआ सीधे दिल में उतर जाता है, और दिल की बात तो सिर्फ दिल से ही हो सकती है। इस गीत को लिखा है हजरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सी रामचंद्र साहब ने। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की।
1: दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
2: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
1: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
2: तब ठीक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार सदाबहार नगमों की, वो रोमांटिक महफिल जिसमें आपको हम लेकर चलते हैं एक ऐसे ही दौर में, एक ऐसे ही नगमों की तरफ जो हमेशा आपके दिल के करीब रहे हैं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:40 और 42 सेकेंड। रोज़ो कहते हैं कि वो महकता एहसास जो हर सुबह की तरह दिल को सुकून देता है और हर रात की तरह दिल की गहराइयों को छू जाता है, ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं। वो फूल जो रात के अंधेरे में खिलता है और सुबह होते ही जमीन पर बिखर जाता है, कुछ अधूरे ख्वाबों की तरह, कुछ मीठी यादों की तरह। आज के इस हर सिंगार की महकती शाम में चलिए यादों के उस दरीचे को खोलते हैं जहां इश्क मासूम होता था और दिल बस धड़कता था, वो भी बिना किसी खास वजह के। आज के इस सफर में हम आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ जिसे सुनकर आज भी दिल वही मासूमियत महसूस करेगा, वो एहसास जो खामोशी में भी बोल उठता है और जिसे अल्फाज की जरूरत नहीं होती। तो चलिए इस जादुई सफर के अगले हिस्से में हम बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमा फिल्म आपकी कसम से। आवाजें हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। सदाबहार गीतों की वो महफिल जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो सदाबहार नगमे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। उन्हीं नगमों में से हम आपके लिए चुन कर लाते हैं उन खास गीतों को जो आपके दिल के बेहद करीब है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नगमे की जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक एहसास है, एक पुकार है उस दिल की जिसे मोहब्बत ने छू लिया हो। दरअसल साल था 1967 का और स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, वो नाम था देवानंद। साथ थी खूबसूरत वैजयंती माला और फिल्म थी जेल थिप। और इस फिल्म ने उस दौर के थ्रिलर सिनेमा को एक नई पहचान दी। हालांकि इस फिल्म में और भी कलाकार थे जिसने इस फिल्म को और भी खूबसूरत अपनी अदाकारी से बना दिया। उनमें थे अशोक कुमार साहब, तनुजा, हेलन फरियाल, अंजू महेंद्रू, नाजिर हुसैन, प्रतिमा देवी, सप्रू, जगदीश राज और सचिन वगैरह। यह फिल्म बेहद खूबसूरत फिल्म थी और इसके नगमे भी बहुत ही प्यारे थे। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से चीजों को दिखाया गया वो शायद बार बार आप नहीं देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात थी इस फिल्म की कि इसके नगमे बड़े प्यारे थे और वो नगमे ऐसे थे जो सीधे दिल को छू गए। उन्हीं नगमों में से एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। तकरीबन इस फिल्म में 8 नगमे हैं, उनमें से ही एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिल पुकारे आ रेया। इस गाने को अपनी आवाज दी लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफी साहब ने, जिनकी आवाज मानो सीधे कानों से उतरते हुए दिल में उतर जाती है। संगीत दिया था एस डी बर्मन साहब ने, जिनका हर सुर जादू की तरह असर करता है। और इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, जो मोहब्बत को अल्फाज देने का हुनर जानते थे। तो आइए उसी नगमे को हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में। ये बेहद खूबसूरत नगमा लता जी और रफी साहब की आवाज़ों में आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा आपके लिए बेहद खूबसूरत फिल्म गुमनाम से। यह फिल्म आई थी 1965 में, इसमें इस गीत को गाया है लता जी ने।

गुमनाम फिल्म के इस नगमे को गाया था लता मंगेशकर जी ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने। इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हर सिंगार की इस महफिल से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद आप सुनेंगे ठीक 11:10 पर खास प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 111। तो सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की दोनों पक्षों ने व्यापार हरित बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उभरती प्रौद्योगिकियों स्टार्टअप्स लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं रक्षा अंतरिक्ष जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की दोनों देशों ने रक्षा महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा बंदरगाह स्वास्थ्य सेवा कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम सब जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पवन ऊर्जा का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की बदलती और मजबूत होती स्थिति क्या है और क्या नए बदलाव हो सकते हैं, उसका उल्लेख किया है। आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें पवन ऊर्जा का उल्लेख है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूँ जो अदृश्य है, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। ये हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि ही, वायुर्वै समष्टि है। अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूअल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।
1: तो इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए पवन ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञों को। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, साथ ही आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक भी हैं। डॉक्टर प्रबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद, धन्यवाद जी।
1: और साथ ही हमारे हैं यहाँ पर अतिथि ओम तनेजा जी। आप उद्यमी हैं और आपका अनुभव जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आप शामिल रहे हैं और भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी।
4: धन्यवाद।
1: जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जिसमें से कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि हवा से तो हम सबका रिश्ता है, लेकिन हम इसे ऊर्जा क्यों कहते हैं, पवन ऊर्जा का सही अर्थ क्या है, और ये मैं जानना चाहती हूँ प्रवीर जी आपसे।
3: ऊर्जा हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई भी काम को सहज कर दे या कोई भी काम को करने में हमारा सहायता करे
1: जी।
3: तो उसमें पवन ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा है और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराने है। अगर हम मानव के इतिहास में देखें कि कौन सा ऊर्जा को हम पहले इस्तेमाल करना सीखे तो पवन उसमें से अग्रणी है। पुराने जमाने में पहले पवन के माध्यम से हमारा जहाज चला करते थे, पवन के माध्यम से पवन चक्की चलाया करते थे जिसमें उन्होंने ग्राइंडिंग करना शुरू किया। बट अभी मॉडर्न एज में हमने वही पवन को इस्तेमाल करके उससे हम बिजली बनाते हैं और बिजली ऊर्जा हमारा क्या सहायता करता है ये शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर घर में प्रतिक्षण हम बिजली का उपयोग करते हैं
1: जी।
3: तो वही बिजली हम पवन से बनाते हैं तो वही ऊर्जा फिर हमारा प्रति काम में हमें सहायता देती है
1: जी। इसलिए हम पवन की जो शक्ति है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं जी। हमने अक्सर वीराने में विशाल पंखे घूमते हुए देखे हैं और कई बार मन में सवाल आता है कि ये कैसे काम करते हैं, यहाँ एकदम वीराने में सुनसान जगह में इनकी देखरेख कैसे हो रही है, ये यहाँ पर क्यों है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ओम जी, जो शुरुआत है पवन ऊर्जा की वो कैसे होती है, जिन्हें हम टर्बाइन कहते हैं या विशाल पंखे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं?
4: अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये पवन ऊर्जा कब से कहां से शुरू हुई है। ये असल में 1960 के दशक से ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे CSIR के और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज के, जिन्होंने शोध करके हमारे यहाँ पवन ऊर्जा कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसमें किया था। तो पवन संसाधन जो हैं उसके लिए हमारी एक साइंटिस्ट थी अना मनी जी, जिन्होंने बहुत कार्य करके और पूरा उसका जो है एक संकलन किया है और उस संकलन को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में डाल के और जो आज के दिन हमारे लिए एक किस्म से बाइबल जिसे कहते हैं वो है। पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं वो अलग चीज है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका था। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे पहला जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था, उसके बाद उसका नाम बदल के हमने MENS किया और उसके बाद आज के दिन वो MNRE कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब भारत में इस नवीनकरणीय ऊर्जा जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
1: जी।
4: पवन ऊर्जा का जनरली फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
1: जी।
4: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता है, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपए का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
4: जो हमारे उस जगह पर जहां हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
1: जी।
4: जो ये बताता है कि किस जगह पे हमें हवा

0: का पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
1: जी,
0: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
1: जी।
0: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
1: जी।
0: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइन्स जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए एक अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी
1: जी। तो इस बारे में हम और भी जानेंगे। अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
0: आई थिंक मेरे हिसाब से ये हवा के साथ साथ
1: जी गाए। हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभलना,
2: हवा के साथ साथ।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं, और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है, मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद की जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको
0: तीली लगा के रखिए
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी,
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसको हम ब्लेड बोलते हैं, जो पंखा आप बताए उन्होंने तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है जिसके वजह से जब हवा चलता है वो ये हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी,
1: और कभी भी बिजली पैदा करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसी जनरेटर के अंदर जो स्टार्टर है या रोटर है उसी को घुमाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। वो पंखा जब घूमता है तो वही घुमावट का जो शक्ति है वो जनरेटर में जाता है और जनरेटर से बिजली पैदा होता है, फिर वही बिजली को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर वही शक्ति हमारा घर पे बिजली बन के हमारा जो आमतौर के जिंदगी में हमारा डेली लाइफ में हमारे लिए, चाहे आपका लाइट हो, घर का पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो,
0: जी,
1: वो हर जगह पे काम करता है।
0: जी, तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इनफैक्ट आज अंडेट प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है।
0: जी,
1: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता दी जाती है वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो, तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट, तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था, फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम GBI कहते हैं, जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जैसे आप एक जेनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा, बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उभर चुका था। तो 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं।
0: जी,
1: मतलब इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जितना हमें बिजली चाहिए होता है मंत्रालय के तरफ से हमारा चार, हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, NTPC है, NHPC है, SJVN है, तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
0: जी
1: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते में मिलता है।
0: जी,
1: जो हमारे डिस्कम को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो स्टेट्स में काम करते हैं, और ये बिजली अल्टीमेटली उन्हीं को खरीदना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे उसको उपलब्ध कराते हैं।
0: तो इसके लिए बिडिंग होती है।
1: बिल्कुल
0: जी। और मैं जानना चाहूंगी कि जगह का चुनाव कैसे किया जाता है कि कहाँ पर टर्बाइन्स जो हैं वो लगेंगी, या इससे जुड़ी हुई रिसर्च कहाँ पर की जाएगी, तो उस जगह का चुनाव कैसे करते हैं?
1: हमें मंत्रालय को इसमें तकनीक सहायता देने के लिए हमारा एक सेंटर है जिसको हम, पहले इसका नाम था सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, CWET के नाम से शुरू हुआ था सन 2000 में, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो चेन्नई में स्थित है।
0: जी,
1: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहाँ पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है। और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर से, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक।
0: जी,
1: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का, और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा। बट ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे, उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है।
0: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है, जहाँ हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है, और कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो आसपास, खुली जगह हो, तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे मास्क लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जब जगह का भ्रमण करते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं।
0: जी,
1: जहाँ पे कंटिन्यूस विंड होता है आप वहाँ पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं
0: वो
1: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहते हैं, तो वो एक प्राइमरी साइन है।
0: जी, किसी भी इंजीनियर हवा की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है। जी, बहुत अच्छे से हमें एक छवि आपने दी है, बचपन से लेकर वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं।
1: तो हम पवन की बातें करते हैं तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज्यादा सावन के महीने में ही होता है।
0: जी,
1: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो चार महीना होता है
0: जी
1: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं।
0: वाह,
1: तो सावन का महीना।
0: जी, सावन का महीना।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत है। और अब हम ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी प्रबीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ,
0: जी,
1: हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए।
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक, लगभग जिसे कह सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष के अंदर, हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जो हमने किया हुआ है उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है। तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं
0: जी,
1: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है
0: जी।
1: उसी के साथ साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी मिलेगा, और हम जो है इसको, और इसी विषय पे, इसी के प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया
0: जी।
1: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए, पावर

0: प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा,
1: जी
0: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया। और उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के उनका भी अच्छा हमें साथ मिला। मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थी, जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी, बेनिफिट्स थे, उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं। और शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें, ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहां मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहां लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है, ऐसे में अगर कोई नया उद्यमी जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: जैसा डॉक्टर प्रबीर ने बताया कि आजकल जो है
1: जी
0: बिडिंग का
1: जी
0: एक तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, वो उसमें भाग लेते हैं
1: जी।
0: इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 70% तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले भी हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
1: इन्वेस्टमेंट
0: किया है, और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी
1: जी।
0: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा, वहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है, बहुत अच्छी उस जगह का प्रोत्साहन मिला है, वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का जिसे बोलते हैं नौकरियां या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है
1: जी, उन्हें रोजगार मिलता है,
0: रोजगार मिलता रहा है। पवन ऊर्जा जहां कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं, चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है
1: जी।
0: और जो है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर का भी हो जाता है, तो रास्ते में कई उनको उद्यम जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है
1: जी।
0: उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है
1: जी। हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइन्स लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से, परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रवीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन चक्कियों को कभी पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्कियां अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए
1: जी।
2: तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना, बट हाँ बिजली उत्पादन थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो सकता है
1: जी।
2: क्योंकि जो पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो
1: जी
2: तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना
1: जी।
2: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है
1: जी।
2: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में, तो उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था
1: जी।
2: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इनबिल्ट है, बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है, क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा
1: जी,
2: कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है
1: जी।
2: जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मानसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है
1: जी।
2: बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है, इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है। तो ज्यादातर आज के डेट पे जो भारत में लगे हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 ही स्टेट में ही सीमित है
1: जी।
2: अभी 1-2 स्टेट में और अभी काम चल रहा है जैसे कि उड़ीसा, तो वहाँ पे भी शायद अगले 1-2 साल में आपको दिखेगा कि वहाँ पे भी लगा हुआ है
1: जी।
2: लग जाएगा।
1: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
2: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश
1: जी।
2: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकंड तक होता है, तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइड से, तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइड होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइड होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है
1: जी।
2: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा
1: जी।
2: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
1: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सर?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं
1: जी।
2: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है हम 12,000 करोड़ से ज्यादा कि पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के अलग कंट्री को निर्यात करते हैं, और जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम आयात नहीं करते, तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट या इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं
1: जी। तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है जी। मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वो अपनी ओर से योगदान करें, और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाएं?
2: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है, बट जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो यही है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है, जो 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट तक, इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500 वाट, 200 वाट, ये सब छोटे छोटे पवन चक्के भी मार्केट में उपलब्ध है। बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे
1: जी।
2: बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी ये तीनों को लगा देते हैं तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए। तो ये संभव है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं।
1: जी ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका, भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
0: ये एक संस्था है
1: जी,
0: जो जितने भी हमारे टर्बाइन के निर्माता हैं, उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं, उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिल

0: और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सोल्यूशन या एक निकालते हैं।
1: जी
0: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सभी जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: मैं आपको, जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो हैं कंपोनेंट और ये सब है,
1: जी
0: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं, और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ताकि जो अभी ये बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना, हम इन सबको अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं,
1: जी
0: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों, और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे मैन्युफैक्चरिंग की और इन सब के ऊपर नजर रखता है,
1: जी
0: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है, ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता
1: चलता
0: रहे।
1: रहे। क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है, भूमि अधिग्रहण को लेकर?
0: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक दुविधापूर्ण रहता है हर एक जो भी पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो हैं इकट्ठी साथ साथ, जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं,
1: जी
0: ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है, ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो, और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं,
1: जी
0: और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है,
1: जी
0: ताकि दोनों ही टर्बाइंस का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा
1: कोई
0: इसका
1: टकराव
0: आपस
1: ना
0: में
1: हो।
0: हवा का टकराव ना हो, और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो,
1: जी
0: क्योंकि बवंडर पैदा होने से हमारी मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती है वो थोड़ी सी हो जाती है, और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता है।
1: जी तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती है।
0: हाँ, देखिए हर टरबाइन जो है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से, पर ये 2-2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइज की या कितनी बड़ी हम टरबाइन लगा रहे हैं उनके
1: जी
0: ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है,
1: जी
0: ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके।
1: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और
0: और
1: पवन चक्कियां जो है रात भर काम
0: खाली
1: करती
0: खाली
1: रहे।
0: यही नहीं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए, उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है,
1: जी
0: कि जिस समय जैसे सुबह 8 से 7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है, उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है, तो वो जो ग्रिड लगी है, जो हमारी तारे हैं, जो हमारे सब स्टेशन लगे हैं, उनमें वो उस बिजली को पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं,
1: जी
0: ताकि जो खाली समय रह जाता है हमारे पवन, जिस समय अच्छी नहीं मिलती उस समय सूरज मिल जाता है।
1: जी आपसे जानना चाहूंगी प्रबीर जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं, और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाइलाइट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, तो जहां पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है, और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि तनेजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं।
1: जी
2: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है,
1: जी
2: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन

0: में भी योगदान करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा, होटल से रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी
1: जी,
0: तो पर्यटन पे भी वहाँ पे सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये। जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा, हम जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं
1: जी,
0: हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है, और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं। अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है
1: जी,
0: दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है
1: जी।
0: फिर वो लिस्ट बनती है, तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं। तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
1: जी,
0: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कम्प्लाई करते हैं
1: जी,
0: तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं
1: जी,
0: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं
1: जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पवन चक्की लगा है तो वे बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता
1: जी।
0: है, तो वहाँ पे इनफैक्ट कृषि भी होती है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी कराया जा सकता है
1: जी।
0: इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहाँ पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे वो पवन चक्की खड़ा है और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरा उपयोग में आ सकते हैं और वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है, तो वो साउंड के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे कोई अगर गांव है, गांव बसा हुआ है, तो वहाँ से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको
1: जी। लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं, समझने के लिए या रिसर्चर्स हैं,
0: और वो सड़क से आई थिंक उसका जो हाइट होती है टिप हाइट तक आप मान के चलिए, उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता। मतलब जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है वहाँ से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि अगर कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहाँ पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे
1: जी। और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है,
0: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हजार्ड। वो गिरेगा भी नहीं तो, क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है
1: जी,
0: तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी रहता है
1: जी।
0: तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहाँ पे लोग जाए उसको छुए,
1: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है इनकी कितनी लाइफ होती है और जब वो पुरानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
0: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से
1: जी।
0: कुछ पुराने टर्बाइन है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं, और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने के जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा, तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी
1: जी।
0: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं इसमें जो भी मटेरियल लगती है, जिस पदार्थ से बनते हैं, उसका 85% मेटल्स होते हैं
1: जी।
0: तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं, और इसका कॉस्ट इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यू नेम ए मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके, और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रिइंफोर्स रेजिन से है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड हो, और इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है, इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नए चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रेजिन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है, 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिस रेजिन से वो बनता है कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट
1: जी
0: लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है, लाइक जो मैंने बता रहा हूँ स्टील लगा है कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा,
1: बिल्कुल,
0: तो उससे कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वायुमंडल में छोड़ा है, तो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट
1: पवन ऊर्जा का
0: पवन ऊर्जा का होता
1: जी,
0: है तो पर्यावरण के लिए ये सबसे फ्रेंडली है
1: जी। यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है जी। तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और मंत्रालय के अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं, जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं
1: जी
2: वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा उनके लिए डिस्काउंट अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, के एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो अपनी पवन चक्कियां लगाकर और किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने मॉल्स हैं उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है वो कर सकते
1: जी। तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है जी। हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में भी इसका योगदान है और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो है वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
1: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे, उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर दहेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा फर्जी है। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार भारत और स्वीडन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर राजी हो गए हैं। यह सहमति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुई बातचीत के दौरान बनी। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के 194 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं एक अन्य मुकाबले में कल धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. I am Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Both the leaders have also agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for PM Modi. Mr. Modi reached Gothenburg in the evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by his Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government, led by Congress leader V.D. Satheesan, will be sworn in today in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Delhi Chief Minister Rekha Gupta launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital yesterday. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as waterlogging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. She added that along with this, citizens will get a safer, cleaner and more convenient environment. The projects include repair and construction of roads in various areas, renovation and modernization of chopals, extensive works to strengthen the drainage system, beautification and green development of parks. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily yesterday, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi tonight. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals were 197 for 5.

लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, यूं मेरे दिल में चले आओ कि आहट भी ना हो। एक मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 ऋषिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज के साथ।

मोहब्बत इंसान को शायर बना ही देती है, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये गाने लिखे ही उन लोगों के लिए जाते हैं जिन्होंने पहली बार किसी को देखकर दिल संभालना सीखा हो। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, दिन रात मौसम बातें, और फिर अचानक कोई जिंदगी में आता है और वही पुरानी दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। अगला गीत लता जी की आवाज़ में आप ही के लिए।

कभी ना कभी हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जिसकी वजह से हम खुद को भी अलग अलग तरह से देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, और यही जो बदलाव है वही हमें और करीब ले आता है उस इंसान के, या शायद खुद के भी। अगला गीत रवि साहब की आवाज में।

वैसे इश्क में ऐसा ही होता है, जब दिल के कोई बहुत करीब होता है तो फिर हर खूबसूरत चीज में वही नजर आता है। बहार उस जैसी लगती है, घटा उस जैसी लगती है, और हर पल हर लम्हा उसके होने का एहसास कराता है, जैसे वो हर जगह मौजूद हो। अगला गीत फिर से रफी साहब की आवाज में।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, सोच तेरे दीदार से उसका क्या होगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ, आपके रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:41 और 41 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप।
1: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babosate.
2: What?
3: My name is Anthony Gonzalez.
2: Gonzalez?
3: Right. My name is...

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: 70s और 80s के दौर के हीरो का भी अंदाज अलग होता था, है ना। दिल टूटने की बात भी ऐसे करते थे कि आदमी उदास कम और एंटरटेन ज्यादा हो जाता था। इसी एंटरटेनमेंट को और बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

प्यार में रंग वंग कहाँ देखा जाता है, बस दिल साफ होना चाहिए। और वैसे भी मोहब्बत में लोग चेहरा नहीं स्वभाव याद रखते हैं। अगला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन

0: के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की थी। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6 स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू. वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड. शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने. प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ.

फिल्म हरियाली और रास्ता से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना आपने ये सदाबहार गीत। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1962 में और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था विजय भट्ट ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मनोज कुमार और माला सिन्हा ने। ग्रामीण परिवेश और प्रेम को लेकर लिखी हुई प्रदर्शित ये फिल्म दर्शकों के दिलों में खास जगह इस फिल्म ने बनाई थी। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और इसके गीत आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ये फिल्म मनोज कुमार के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक मानी जाती है। और अब सुनते हैं हम अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में।

आशा जी और रफी साहब की आवाज में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था फागुन, संगीत ओपी नैयर का और गीतकार थे कमर जलालाबादी। 1958 में आई ये फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था विभूति मित्रा ने और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी प्रणब रॉय ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला और भरत भूषण ने। फागुन फिल्म की कहानी बीजन के इर्द गिर्द घूमती है और जो एक जमींदार का बेटा है अपनी रिलीज पर फागुन 1958 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट फिल्मों में से एक गिनी जाती है और अगला गीत गीता दत्त की आवाज में

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:34 और 34 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहानी। अगला गीत फिल्म बरसात की रात से।

आशा जी, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म बरसात की रात से। संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिल लुधियानवी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और ये एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म थी जिसका निर्देशन पीएल संतोष जी ने किया था और निर्माण किया था आर चंद्र ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, भारत भूषण और श्यामा ने। बरसात की रात फिल्म दो प्रेमियों शबनम और अमान के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। 1960 में आई ये फिल्म दूसरी 1960 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। और अब अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मधुमती से।

वक्त हुआ है 1:53 और 24 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहानी। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जा रही है। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PAIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation, and co-creation.

तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपके रात के हम सफर बंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 54 सेकेंड। आगाज हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की किशोर कुमार की आवाज के साथ।

अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यकीनन इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। वाकई इन पुराने गानों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि ये दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, दिलों को नज़दीक लाने का काम करते हैं, और इस नज़दीकी को हम और बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ। अगला गीत

वाकई कुछ लोगों की मौजूदगी हमारे जीवन में मोती की तरह होती है, जिसके साथ रहते हुए हमें सुकून मिलता है। कुछ रिश्ते हमें जिंदगी में किस्मत से मिलते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें गानों में, बातों में या फिर यादों में संभाल के रखना चाहिए। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

मेरी पसंदीदा सफेद शर्ट पहनकर आओ तुम मुलाकात पर, मेरी पसंदीदा सफेद शर्ट पहनकर आओ तुम मुलाकात पर, तुम्हारी पसंदीदा सिल्क साड़ी में मैं आऊं। पास में ही कहीं गुलजार की लिखी गजल जगजीत सिंह की आवाज में बजती रहे, हम दोनों अपनी पसंदीदा कॉफी साथ में पीकर घंटों तक एक दूसरे को देखते रहें। उफ, मेरे ख्वाब भी कितने अमीर हैं, पर मेरी तमन्ना है कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो एक रोज़।

7.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:39:17 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

मैं कहता रहा, वो सुनता रहा खामोश। मैं कहता रहा, वो सुनता रहा खामोश। कभी कभी इस तरह भी हार हुई है मेरी।

आज दिन भर ना याद किया तुम्हें, आज दिन भर ना याद किया तुम्हें, यही एक बात दिन भर याद रही।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

साथ सुरमई में आज के लिए बस इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी आज ही के दिन. अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. 3:10 पर आपके साथ रहेंगी नीता अग्रवाल. मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र पारदर्शिता नवाचार और स्थिरता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हैं उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान नवाचार हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना एक साझा जिम्मेदारी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
2: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. PM Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the PM of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation. He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors and advanced manufacturing. The discussions

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रही हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 3 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। ये रात का सफर पूरे 24 घंटों के सफर में सबसे अलग एक महत्वपूर्ण काल, क्योंकि ये समय जो सिर्फ अपना है।

सुख कर है जिसमें जागती आंखों संग नींद में भी सपनों को आने की अनुमति है और सपनों की बातें कुछ यूं भी हुआ करती हैं।

महेंद्र कपूर लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत गीत फिल्म से अभी आपने सुना 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों कल्याण जी आनंद जी का संगीत था हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी साथियों रात का सफर रोज बरोज होता है लेकिन हर रात फिर भी रोज अलग अलग रूपों में हमें नजर आती है कभी आसमान में चांद पूरा कभी आधा कभी चांद है ही नहीं कभी घटता या कभी बढ़ता चांद न सिर्फ इतना बल्कि हमारे ख्यालों और एहसासों की दृष्टि से भी हर रात अलग अलग होती है

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजा ये गीत शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ था। बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। और अब हमराही के प्यारे वादे से सजा ये गीत।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया था। गुलशन बाबरा की लिखी रचना थी। 1974 रिलीज इस फिल्म का नाम हाथ की सफाई।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कभी, राहें दो राहें या स्थान विशेष छोड़ जाने की मजबूरी, लेकिन मन की राह एक ही रहती है। कैसे, आइए जानते हैं इस गीत में।

मदन मोहन का संगीत बद्ध किया ये गीत था साथियों राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। फिल्म का नाम वो कौन थी जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी। और अब हमराही बनकर आ गई हैं एक मतवाली आंखों वाली। क्या कहा जा रहा है इन्हें, सुनते हैं।

0: आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। शैलेंद्र की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम छोटे नवाब, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

साथियों, रात का समय कई बार नींद न आने का समय भी बन जाता है। अब नींद न आने के कारण तो भाई कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण ये भी।

शमशाद बेगम और किशोर कुमार की स्वरों से सजा ये गीत था नया अंदाज फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। ओपी नैयर का संगीत था, चानीसार अख्तर की लिखी रचना थी। और अब साथियों एक खूबसूरत अदा लीजिएगी जिसमें एक मीठी प्यार भरी शिकायत का खूबसूरत अंदाज शुमार है।

बॉबी लहरी के संगीत से सजा ये गीत लिखा था रमेश पंत ने। मोहम्मद रफी उषा मंगेशकर की आवाजें थी। फिल्म का नाम वारदात, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1981 में। रात के खामोश सफर में चांद का साथ रहना और उस पर भीगी रात का चांद और भी सुंदर हो उठता है। काली घटा सी आंख मिचौनी सी खेलता ये चांद हम सभी को भाता है।

लता मंगेशकर मन्ना डे के स्वरों से सजा ये गीत सुहागन फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मदन मोहन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। और अब हम राही कार्यक्रम के अंतिम गीत पर, आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति पर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर गीत, एक और गीत आ रहा है परिवार फिल्म से।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, गुलशन बाबरा की लिखी रचना, फिल्म का नाम परिवार जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरों के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें 4 दिनों का अंतर हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. PM Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the PM of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation. He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly, which is being held from 18th to 23rd May 2026. In a social media post, Mr. Nadda said that this year's theme, Reshaping Global Health, A Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. He said the assembly will bring together health ministers, dignitaries and public health experts from more than 165 countries, reaffirming the shared global commitment towards building stronger, more inclusive and resilient healthcare systems. India has expressed deep concern at the attack targeting the Baraka nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals were 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs for Rajasthan Royals. Jofra Archer and Brijesh Sharma scalped 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. Put to bat, Rajasthan Royals scored 193 for 8 in stipulated 20 overs. Dhruv Jurel was the highest scorer with 53 runs. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 4:11 और 7 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। सूर्य पर सूर्य की लालिमा, धरती पर सुंदर लालिमा का प्रकाश बिखेरे। सूर्य की सुंदरता, अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

सुमन कल्याणपुर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना जानवर फिल्म से। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

दीदार का। मुकेश की आवाज से सजा ये गीत सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम डॉक्टर विद्या, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में। मित्रों, जैसे जैसे वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये दुनिया, देश और हम भी उस परिवर्तन के दौर में बहते चले जाते हैं। जैसे कि विशेषकर बरसात के दिनों में झूलों का लगना, वो भी अम्बुवा की डारी पे। गीत भी है एक ऐसा एक, अब झूलों का दौर जरा कम ही नजर आता है। झूला झूलते समय जो हवा लगती थी उसका एहसास और झूले का आनंद इस गीत के साथ।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत बैजू बावरा फिल्म से अभी आपने सुना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, नौशाद का संगीत था, शकील बदायूं की लिखी रचना थी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति जीवन में आता है, चला भी जाता है, लेकिन अपने होने का एहसास जीवन भर के लिए दे जाता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी बातें, यादपन बार-बार उभरती हैं हमारे मन मस्तिष्क में।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत छोटी सी बात फिल्म से अभी आपने सुना। 1976 रिलीज ये फिल्म थी मित्रों। सलील चौधरी का संगीत था, योगेश की लिखी रचना।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों से सजा यह गीत गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से था जो रिलीज हुई थी वर्ष 1957 में मदन मोहन का संगीत था राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना

मित्रों, अरुणिमा की आभा जब सजती है तो सबसे बेहतरीन मौसम होता है। प्रदूषण बहुत कम या नहीं भी होता, शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण, कोई व्यवधान नहीं। और ऐसे में कोई बजा रहा सुरीली धुन, छेड़ रहा ये गीत।

भूपेन हजारिका के संगीत निर्देशन से सजा ये गीत माया गोविंद ने लिखा था। लक्ष्मी शंकर की आवाज थी। फिल्म का नाम आरोप, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। और अब दिल में सजी आस का एक रूप ये भी।

सुबीर सेठ की आवाज से सजा ये गीत आस का पंछी फिल्म से लिया था। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। ये रिश्ते बनने का कारण चाहे कुछ भी हो, इन्हें भली प्रकार से निभाने के लिए जतन करने होते हैं। कभी कोई माफी मांग ले, कहीं कोई और हाँ माफी ली गई बात को दोहराए बिना ये ख्याल रखा जाए, नहीं तो माफी की भी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजा ये गीत काला पानी फिल्म से अभी आपने सुना। 1958 रिलीज ये फिल्म। बजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था और सचिन देव बर्मन का संगीत था। साथियों, सुबह होने वाले कार्यों में जब ऐसा कार्य जुड़ जाता है जो हम बहुत समय से सोच रहे हैं और वो हो भी जाता है या होने ही वाला है, तो इस तरह की खुशी तो व्याप्त होना स्वाभाविक ही है।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत सपन जगमोहन का संगीत नक्श लायलपुरी की लिखी रचना 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जिम्बो फाइंड्स अ सन

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत क्रांति फिल्म से अभी आपने सुना। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। संतोष आनंद ने गीत लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों में प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। रूस में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ओरफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Mr. Modi arrived in Gothenburg yesterday on a two-day visit to Sweden. PM Modi was awarded the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander, Grand Crosses in recognition of his exceptional contribution to the India-Sweden relationship and his visionary leadership. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. They discussed ways to deepen cooperation in trade and investment, technology and innovation, green transition, space, emerging technologies, defense and security, SMEs, research and people-to-people ties. The two leaders agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of their people. The leaders also exchanged perspectives on regional and global issues. PM Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. In the fourth leg of his visit, the PM will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway and will mark the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Kerala on the 14th of this month, putting an end to the suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Kerala Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reinaugurated and laid

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 5:11 और 26 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, महात्मा गांधी जी का कथन है, केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। मित्रों, इस कथन को यदि हम अपने जीवन में ढाल लें तो हमें खुशी मिलेगी ही। खुशी को बांटे हुए लम्हे दूसरों के जीवन को भी महकाएंगे, जिनसे प्रेम और प्रसन्नता दोनों में बढ़ोतरी होगी।

हेमंत कुमार की आवाज से सजा ये गीत आबे हयात फिल्म से अभी आपने सुना। 1955 रिलीज फिल्म सरदार मलिक का संगीत हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों, जब हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, जब धरती किसान की मेहनत से अन्न से परिपूर्ण हो जाती है, तो किसान के साथ साथ धरती भी उस खुशी को महसूस करती है। इसी तरह से जब हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे उपायों को करेंगे धरती को बचाने, उसे साफ रखने के वास्ते, तो भी धरती खुशी से झूम उठेगी और धरतीवासी भी उस खुशी को महसूस करके जरूर खुशी का अनुभव करेंगे। धरती

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत नौशाद का संगीत बद्ध किया। जानिसार अख्तर की लिखी रचना, फिल्म का नाम आईना जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। मित्रों, सुबह का सफर दिल में भी आशाओं की लालिमा लिए होता है, कई सपने, कई अरमान, कई चाहते।

0: किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत मछाल फिल्म से अभी आपने सुना। 1984 रिलीज ये फिल्म, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था, जावेद अख्तर की लिखी रचना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

इस समय श्रोता साथी सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। साथियों, इस धरती पर हमारे पूजनीय होते हैं हमारे माँ पिता। उनकी सेवा आदर ही हमारा परम कर्तव्य है। उनका दिल न दुखे, उन्हें पूरा सम्मान मिले, ये हमारा ही फर्ज है। इस फर्ज को कभी ना भूलें।